0: भंग प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ। बाबा जी असि भी उन्होंने दर्शन करने आया किथे मिलेंगे?
0: सचखंड विखे।
1: सचखंड?
0: हां बेटी गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जाग राजे ने ता फिर साढ़े पागा च उन्होंने दर्शन नहीं। निराश ना हो बेटे उन्हों का रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख साहब की सेवा करा रहे ने।
1: तुंग पिंड?
0: हां तन गुरु अमरदास तन गुरु रामदास
1: तन गुरु अमरदास
2: तन गुरु रामदास।
1: किन्नी सोनी था है। तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंड जाके कुछ खान नू लेनी हूं नाले पता कर लांगे तुम पिंड किन्नी दूर है। अच्छा
2: छेती आना। तन गुरु रामदास।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म भारी। धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: रस तो जाए सरा।

0: पत्नी, तू तान्य पुत्र, ते तान्य तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश।
1: नानक भक्ता सदा विगास,

0: फिर तुम घर जाओ।
1: नहीं पिताजी, जिथो मेरे पति नु नवा जीवन मिलिया सारे लिए कोई थल सुलखनी।
2: रजनी ठीक कहंदी है राजा दुनी चंद, ऐसी सारी तीर्थ यात्रा ते तपस्या दा फल समुचे तौर ते ऐसे स्थान ते मिलिया है। ऐ धरती बड़ी पावन है, एनु ऋषिया मुनिया दा वरदान है। ऐ बेरी दुख पंजनी बेरी है, ते ऐ चकड़ी अमृत दा कुंड है।
0: अमृत से इसे पूछते गुलाम दास जी ने पर्दा तक लगा के इस अमृत सरोवर का रूप दिता, जिथे अज लखा इंसान स्नान करके मन निर्मल अति तन पंचन करते हैं। की हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई।

पंजवा वचन सखा दी टहल सेवा माण होंदयावे अवस्था होंदयावे सिख दी टहल सेवा दो प्रकार की कहंदे ने तुहाडा चित आ जावे सिख दी टहल सेवा मैं भी करां दो प्रकार की जे एक लोड़वंद सच्चे ग्रस्ती सिख की आर्थिक मदद करनी ध्यान देना आर्थिक मदद तन वालों माया वालों आर्थिक मदद लोड़वंद यह लफज नोट करने लोड़वंद सच्चे सिख ग्रस्ती की आर्थिक पक्ष वालों मदद करनी सिखां दी टहल सेवा दो प्रकार की एक यह है एक है कि सिख का घर प्रशादा सद के उदी कोई टहल सेवा करनी ये दोवें जरूर हो पिछे जे तुहाडे चों सज्जण सी सुल्तान विंड पिंड तो एक शरीर जिदा पंज पाड़ सुमनी साहब नेम सी छब्बी पाड़ जबजी साहब नेम सी ते सैकल सी टुटा जा गरीबी वालों दरबार साहब रोह जाना उन्हें साढ़े तीन चार बजे ते तुहाडे चों एक सज्जण ने मैनू याद है 5000 रुपया मेरी जेब च पाया सी कहिंदे उस सिख नूं एक स्कूटरी लै दिओ सैकेंड हैंड जिन्नी कि मेरी समर्था है मैं चाहना भी वह 3:30 बजे सैकल ते ना आवे स्कूटरी ते आए ध्यान देना यह आर्थिक मदद मैं फस भी गया सा उदों उन्हों मैं क्या भी इतना किसे दी गल आई तेरे लिए आ लैनी वो अगों कहिंदा सी नहीं मैं लैनी नहीं देण वाला कहिंदा सी मैं करनी ते फिर ना विचकारला जिहा काम करके नबेड़ना पिया सी भई तू उहदी उधारी समझ के रख लै जदों तेरी बन गई तू उहनूं मोड़ दई जिन्हें मदद की जिन्हें मदद की सी वह कहिंदा जी मैं दे के लवा मैं उहदा मोढ़ा फड़ के मैं क्या इहो जिहा फिर होर लभ लांगे उहनूं दे देंगे लख सतनाम इतना ही होर गुरसिख दी गुप्त यह होवे गुप्त शो करके नहीं ये फिर आर्थिक मदद शो करके दित्ती तो अगले दी हीण भावना आ जाए यह होवे बस सजा हथ दवे तो खब्बे नूं ना पता लगे वाली गल आर्थिक मदद कोई रंगे होवे गुरसिख नाम जपण ना होवे आर्थिक पक्षों कमजोर होवे उहदी धी दा विआह होवे ना उहदे घर आम रिश्तेदारां नालों ही जाण के रहा होवे डबल होर ज्यादा सघन जाण के पा के आया करो होवे बंदगी वाला नाम जपण वाला तुहाडी उस वेले उहनूं लोड़ हुंदी है आर्थिक मदद दी इह सिख दी टहल सेवा इक इह है आर्थिक मदद करनी पर होवे नकली ना अजे नकली बड़े जाए आखो सतनाम आ कथा मैं नहीं चाहता कहर बन जाए कथा कहर ही बन जाए वो नकली का बड़ा ही हो मदद लैण वाले ये तुसी रखना कि वाकई नाम जपण वाला है बंदगी वाला है अमृत वेले जागण वाला है आर्थिक पक्ष कमजोर है तां भी कुछ करा है आतर से वैसे नकली तुसी रखना है क्यों महाराज ने कहा

दानी अकल ना कर, क्योंकि मैं स्टेज ते बैठा कफा कैर ना बने तां परहेज नाल दस रहे हैं। तो अपने को भी लेना लगी पीछे नकली दी, दो चार ते रोज एहो जे केस आंदे है। बाबा जी हजूर साहब जाना है किराया चाहिए, सतनाम भला हो जाए। वो तेन दो महीने पहले तो दिता जी हजूर साहब का किराया, यो आया वा जी। कुछ होर बंदियां ने कहा सी साडी मुंदरी चढ़ाना साडा चढ़ाना, उहदे पिछे मैनूं जाना पै रिहा। पता नहीं हुण कईआं को की कोई लिया सतनाम पता। कार्ड आ जाए व्याह है जी मदद करो, असि फिर बाबे दे हां खुल के कही दा तू कार्ड ले आया मदद ली गया तो। हां जी व्याह है, बच्ची का व्याह है। उसी आप कथा की थी पैर सेवा करनी, फिर कार्ड फड़ के कही दा कि सच दस जिवें साडे कोल कार्ड लैके आए, किन्नियां संस्थावां कोल कार्ड लैके मदद मंगणगे। जे सच दसेंगा तो आ 1300 रुपया ही, जे नहीं सच दसेंगा फिर कई बार सेवा नहीं करनी। कहिंदा जी ये 13वीं 14वीं संस्था है सतनाम। मैं कहा तू तो फिर धी दे व्याह नूं व्यापार बना ले, इत्थों भी लै लो उत्थों भी लै लो उत्थों भी लै लो उत्थों भी लै लो, ये तुसीं वेखणा है नकली भी है। वाकई जेड़ा कोई गुरसिख है नाम जपण वाला है, आर्थिक पक्षों कमजोर है, ओदी बच्ची का व्याह है, एक तो जरूर जा भावें 10 मिनट ले जा, तेरे जान नाल ओदा माण वधेगा। एक ओनू 4 गुणा सगन भावें लिफाफे च दे आ इसे बहाने नाल। एक इस दुनिया की मैं गल नहीं कर रहा, ये गुरु नानक वेले का इतिहास फरो लो ना, दो भरा सुन दे ना सूरज प्रकाश शिया गजन दोनों भाई आए सतगुर की शरण आई, दोवे शिया गजन विआह सी ना शिये दी कुड़ी दा। वो बरात जदों आई सी ते उन्होंने आंदियां कहता जी बरात 7 दिन 7 रातां रुकेगी, क्या कि नहीं रवाज हुंदा सी बरातां 2-2 दिन रुकदियां सी 2-2 रातां, हुण ते रवाज बदलदे जा। उन्हां कहा 7 दिन ते उन्हूं फिक्र लग गया सी आम चारा सिख, कहिंदे जिन्ना लाका सी फिर उन्हें हर कोई अपने घरों क्यों दोवे नाम जपण वाले सतनाम करना 7 दिन 7 रातां पढ़ो साखी। कहिंदे पदार्थ वंडींदे रहे ने, बरात छकदी रही संगत छकदी रही, तोट नहीं आई संगत बोड़ गई अख सतनाम।

हजूर कहने लगे माई आई ऐसे वास्ते हां। चल अंदर चली, अंदर गई सोहनी विछाई विछाई, गुरु चल के आवे घर विच इस नालों होर वड्डे पाक की हो सकदे। सोहनी विछाई विछाई, हजूर गुरु नानक सच्चे पातशाह टिक गए। थाल परोस के प्रशादे दा लैके आई ते पातशाह दे अगे रखे, गरीब नूं आज करो भोग लगाओ सीत प्रशाद बख्शो। सतगुरां ने प्रशाद छकिया, सीत प्रशाद जिस वेले इस माता नूं बख्शिया ते इहदे कपाट खुल गए। मेरे घर गुरु नानक निरंकार आया, जितना हो सके मैं सेवा करके अज अपने भागा नूं वड्डा कर लवां, अपने पुन्ना नूं वधा लवां। ते उधर साध संगत सौ सुहागण फकीर दे डेरे विच कोई ऐसा पाणा वरते है जिथे सब दुनिया सिफतां करदी सी, सजदे करदी सी, भेटावां लियांदी सी, लिया के चरणा ते मथे टेकदी सी। कोई ऐसा कौतक वरते आ क्योंकि गुरु नानक पातशाह दी रसना तो बोल जो निकल गया सी, कल पता नहीं इत्थे कौन आवे ते कौन ना आवे। जेड़े उस्तत करन वाले सन, जेड़े रोज महिमा गाउंदे नहीं सन थकदे, अज उसे रसना दे नाल फकीर दी निंदा हो रही। आखदे न केडा पखंडी है, केडा झूठा है जिसने इन्नी देर ए झूठ दा जाल विछाया होया। भाई सानू तां अज ही पता लग्या, बस एक दे दूजे कन्नी, दूजे दे तीसरी कन्नी, बस निंदिया शुरू हो गई। जेड़े आए सन ओ भी वापस मुड़ गए। ते सौ सुहागण अंदर बैठा सोचदा है भी अज पाणा की वरते, जिथे अगे लोग मेनू आके इतना प्यार देंदे सन, भेटावां चढ़ांदे सन, अज की पाणा वरते है। भाई दरबान नूं बुला के पुछदा है ता उन्हें बेनती की थी, महाराज कल कोई तीन फकीर आए सन रब दे प्यार, जिन्हां दे चेहरे दा जलाल नहीं सी चलिया जांदा। उन्होंने आखिया भी असी सौ सुहागण फकीर दे दर्शन करने हन, ते मैं ये आखिया भी अज दर्शन नहीं होने, कल नूं दर्शन होणगे। ते उन्हां दी रसना तो ये बोल निकल गया, भई कल पता नहीं इत्थे कौन आवे ते कौन ना आवे। जापदा वो कोई पुजे हुए महापुरख सन, जापदा वड़े कमाई वाले सन। सौ सुहागण ने आखिया भी हुण किवें पता लगे। ते इधरों साहिब गुरु नानक सच्चे पातशाह माता दे घर बैठे हैं, एक पासे तां सौ सुहागण भेख बना के पूर्णमाशी दी रात नूं उड़ीक रहा है, परमात्मा मेरी सेजा ते आ मैनू दर्शन दे। ते एक दा बुआ सौ आप पिया खड़कांदा, आप माई नूं साहिब दर्शन दे रहे। सत्संग बोलो श्री वाहे। हजूर बैठे सन ताइयो एक कोड़ी जिदे तन ते कोड़ है, घर वालिया ने सोचिया भी ये छूत दी बीमारी है, मत किसे होर नूं लग जाए भी इनू घरों ही बाहर कढ दे। ए कोड़ी बिचारा दर दर मंगदा पया, जे किसे ने टुकर दे दिता ते खा लिया, जे नहीं मिलिया ते फिर कड़ाके निकले। ते जे कोई रोटी भी सुट दे ते इंज सुट दे भी जिवें किसे कुत्ते नूं रोटी पा दित्ती होवे। सतसंग बोलो श्री वाह। ए बिचारा दर दर मंगदा, कदी कदी ए कोड़ी माई दे घर दे कोलों दी लंघदा सी, ते माई लप आटे दी चुक के इसकी चोली विच पा दिंदी सी। अज भी जिस वेले ए कोड़ी कोलों दी लंघिया ते सदा कीती माई भूख लगी, कोई रात दा बिआह प्रसादा किसे वेले दा टुकर पिया होवे ते मैनू दे। माई दे नेत्र बाहर आए, अंदर गई जिस वेले लप आटे दी चुक्की पाउण वास्ते, ते साहबा ने आखिया माई अज तू दान इस नूं नहीं देंगी, अज मैं इनू दान देंगी। माई दे नेत्र बाहर आए ते आखदी वे कोड़ी जिथे मेरे भाग अज जागिया तेरे भी भागा नूं चार चन लग गए, तू अंदर आ जा। जां ए गल कोड़ी ने सुनी, माई आखदी है अंदर आ जा, मैनू तां कोई बुला के राजी नहीं, मेरे नाल कोई सदा करके राजी नहीं, जे कोई रोटी भी दिंदा है तां दुरकार के सुट दिंदा। ते अज माई अंदर पई बुलांदी है, माई ने आख्या कोड़ी सिर्फ तैनू नहीं बुला रहे, आ अंदर वेख, जगत गुरु गुरु नानक
आप नारायण कलाकार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। ते कोड़ी तेरे शायद पाग जगावन खातर, तेरे पुना दी खातर, इसे पूर्वले जन्मदा कोई होवेगा पुन इस दा। अरो पिया कोड़ी मेरा पुन किथे, मैं ता पापां दा गरसिया होया, पता नहीं केड़े जन्मां दे पाप मेरे सामने आए हन, ते ए दुख मेरे शरीर नूं लगे हन। अंदर आया जिस वेले आण के नमस्कार कीती गुरु नानक सचे पातशाह दा, नेत्र खुले नजर पै गई, ओ नजर पै गई नानक नदरी। एक बार उच्चारण करो नजर निहाल, नानक नदरी नजर निहाल। ओ नजर कीती जड़ी नजर किसे वेले पई सी ओ पत्थर ते, पत्थर ते बैठा वली पत्थर ही हो गया। बड़िया कमाइया वाला बंदगी वाला नाम जप जप के एडा हंकारी बन गया, किसे नु बंदा ही नहीं समझदा। पर बाबे ने बख्शन दी खातर आप ही पहुंच गए। जिसरे ओ वली कंधारी ने बड़ा पत्थर थले नु अलोरिया, मर्दाने आखिया मर्दा हां। साहब आखन लगे मर्दानिया कोई मार नहीं सकदा, जाम गुरु होए वल तने क्या गर्ब दिजे, जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या कीजे। मर्दानिया जिस वाले गुरु होवे अकाल पुरख होवे, बेशक लखा बावां पईयां उलरदियां होवन, ओदा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। ते हजूर दी नजर जिसले ओ पत्थर ते पई, पत्थर भी टल के मोम हो गया। जिसले नेड़े आया ते साहबा ने हाथ नाल रोक के पंजा जिसले लाया, ते ओ पंजा अंदर खुब गया। नदरशील ओ नजर पई कौड़े रीठे दे उते, ते अज ताई ओ मिठा होया खलोता। ओ नजर कीती अज उस कौड़ी दे उते, नजर ही नजर निहाल कर दिता, सारी देही कंचन वर्गी हो गई। अपने तन नूं वेखदा कदी गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं तकदा, गरीब नवाज कितना कु तेरा शुक्र गुजारा। ये अखर सत्कार योग संत सुजान सिंह जी महाराज अपने मालक दे शुकराने विच किया करदे सन। बख्शीशा पा के धन बाबा नंद सिंह महाराज जी दे कोलों सर्वदाता नूं प्राप्त करके जद भी बोले, जद भी उस अकाल पुरख गुरु नानक सचे पातशाह दी सिफतो सलाह गाई, इक इक अखर ओ सुचा मोती जिस किसे ने सुनिया ओदे हिरदे विच शेक हो गए। आप क्या करदे सन, कितना कु तेरा शुक्र गुजारा, कितना कु तेरा शुक्र गुजारा, कितनी कु शाबस देवा, हे निरंकार कितना तेरा शुक्र करा, तू सानू मनुख जन्म बख्शे, ए कंचन वर्गी देई सानू बख्शी है। कितना कु तेरा शुक्र गुजारा, कितनी कु शाबस देवा, मैं कंगला सुख पातशाहियां दे तेरे दिते लेव। गरीब नवाज ए पातशाहियां ए बादशाहियां दुनिया दे सुख मान इज्जत वड्याई, आ जो कुछ भी बख्शी है ए सब तेरी बख्शिश है, ए तेरी रहमत है। साध संगत जदों भी कोई मनुख निरंकार दियां दित्तां दातां नूं पा के शुकराना गुजारेगा, उस दाता विच कई गुणा वाधा होएगा। ते जेड़ा बई उस दियां दित्तियां दातां नूं पा के शुकराना नहीं गुजारदा, ओ फिर अकिरत कण हो जांदे, ओ साईं नूं नहीं पाउंदा। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। साहिब गुरु नानक पातशाह दी नजर हो गई, कोड़ी राजी हो गया, कहिंदा गरीब नवाज कोई सेवा बख्शो, दात बख्श करो। साहिब गुरु नानक पातशाह आखन लगे कोड़ी साडी गल मनेगा, कहिंदा जी क्यों ना मन, आपने तां मेरा कोड़ दूर कर दिता, कंचन वर्गी देई बना दिती, हुण तां तेरा लून नूं तेरा शुक्र गुजार है, हुण तां ए तन मन है ही तेरा, हुक्म करो। साहिब गुरु नानक पातशाह आखन लगे जे तेनू कोई पुछे भी तेनू राजी किने कीता,
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਸੁਹਾਗ ਨੇ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜੀ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰੀ ਕਰੇਂਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ। ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰੀ ਕਰੇਂਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ। ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਖਿਆ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਸਭ ਦਾਤਾ ਮਿਲਣਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਕੋੜੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਜਦੀ ਪੁੱਜਦੀ ਜਿਸਲੇ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੋਚਦਾ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਖੰਡੀ, ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਪਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ, ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ ਕੋੜੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਲਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ ਕੋੜੀ ਦੇ, ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਤਨ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦਾ ਕੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋੜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ? ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਕੱਲ ਜਿਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣ। ਆਇਆ ਜਿਸਲੇ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਛੱਡ ਗਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਾਮਰ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਸੇਜਾ ਤੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਸੌ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋ ਪਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸੌ ਨੇ ਆਉਣਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਫਕੀਰ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੜ ਰਹੇ

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी दा आनंद माणिया है। असि आप जी दा ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करदे हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गलबात पंजाबी विच करदे हो तां आप धन्नता जो हो। जे कुछ कसर है तां अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समां केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां इह समां उहनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, उह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है तां ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनियां वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो। केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो।

मन करता है। ये पवित्र शब्द सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास। जब सतगुर के चरणों में अरदास की फिर सतगुर ने अरदास सुनी। जेड़ा अरदास सुनता है, जेड़ा अपने सिख की लाज रखता है, फिर उसके चरण धो के पीड़ नूं क्यों ना मन करे। कई कहंदे ने अरदास की पर अरदास पूरी नहीं हुई। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का महावाक है, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। अरदास कदी बिरथी नहीं जाती। श्री आनंदपुर साहब हजारा

क्योंकि संत के संग नहीं किसे घाल, जदों साध के संग नहीं किसे काल, दर्शन पेटत होत निहाल। महापुरखां दे सत संगत दे दर्शन करके भी पापां दी मैल कटी जांदी है, मन जुड़ जांदा है गुरु दे चरणां विच। जिस तरह आख्या तिना देख मन चाओ उठंदा, जुड़िया होया दे दर्शन करके मन अपना भी गुरु चरणां विच जुड़ जांदा है। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं भाई, साध कै संग नहीं किस काल, तेनू बहुतियां कालना नहीं कालनिया पैणगियां, संगत दे दर्शन करके भी तू निहाल हो जाएगा। दर्शन पेटत होत निहाल। साध कै संग कलूकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इया उआ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेल। ए लोक भी सुखी हुंदा है ते परलोक भी सुहेला हो जांदा है। असी निरंकार दे चरणां तो बिछड़े होए हां, ते जपन वालियां दी संगत जदों मिल जावे तां साडा मन जुड़ जांदा है। भाव विछड़िया होया गुरु दे चरणां नूं मिल पैंदा है। साध संगत बोलो श्री, ते फिर जो इच्छा है सोई फल पावे। जिसने भी फिर भाई निरंकार दी सच्ची दरगाह विचों मंगया है, फिर उसकी भावना पूरी हुई है। वो कदे इस दर तो खाली नहीं मुरिया। अनेकां मिसालां हन, कोट अपराधी संत संग उधरे, करोड़ां अपराधियां दा उधार हो गया सत संगत विच आके। ते फिर जेड़ी वस्तु किसे ने मंगी, ओ दात ही नहीं मिली, दातां एडियां मिल गईयां के सबे थोक प्राप्ते। थोक दाता मिल गईयां, अगों वंडन वाले बन गए। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। इसलिए हजूर बख्श

परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। जे लोक परलोक सुवारना चाहुंदा है भाई, जिन्हां ने भी सुवारे है उन्हां नू सत संगत विच जाना।

जाया कर देश, राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा हुए। स्त्री पतिव्रता बड़े धर्म विच रहन वाली स्त्री दा नाम तारा मती सी। रोजाना पिछली रात सत संगत विच जाया कर दी सी, पर राजा इस पास्यों अजे अज्ञात सी। राजा जी दे जागण तो पहला ही वापस आके अपने मंजे ते लम्मी पै जांदी। इस तरह करदियां राणी नूं काफी दिन लंघ गए। एक दिन राणी दे जान तो पिछों राजे दी अचानक जाग खुली। की वेखता है कि राणी कोई नहीं। राणी दा बिस्तरा खाली जान के बड़ा चिंतातुर होया कि राणी ऐश वेले किथे चली गई। राणी दे चाल चलन तो राजे नूं कुछ शक हो गया ते विचारदा है इसका भेत जरूर लेना चाहिए। ये रात नूं किथे जांदी है। दूजी रात हुई, राजा सौ गया। राणी राजे नूं सुता जान के अपने मंजे तो उठी, खरावां पा के इशनान वाली जगह पर आई ते इशनान करके वस्त्र बदले, फिर साध संगत विखे जान लई तुर पई। राजा इस दे सारे करतब नूं देखदा रहा, पर जिस वेले राणी तैयार होके महलां चो बाहर निकली तां राजा भी मगर मगर तुर पिया, भई किथे जांदी। जिस वेले राणी अपनियां खड़ावां ला के संगत विच जाके बैठी तां मगरों राजा उसकी खड़ाम चुक के महलां विच लै आया ते कपड़े विच लपेट के संदूक दे विच रख दित्ती ते बाहर जंदरा मार दित्ता। इधरों सवेर दे समय दीवान दी समाप्ति होई और संगत उठ के आपो अपनी घरी जान लगी। राणी मत्था टेक के बाहर निकली तां की तकिया, एक खड़ाम है नहीं। मन विच विचारिया जे एक खड़ाम लै गई घर तां पुछ होवेगी, राजा पुछेगा कि दूसरी खड़ाम किथे, ते जे तू बाहर नहीं निकली तां घर विच किथे गायब हो गई। राणी मुड़ के साध संगत विच आके बेनती कीती कि मेरे लिए अरदास करो कि मेरी खड़ाम लभ पवे, मते मेरे परम पति राजा नाराज ना हो जान मेरे नाल। साध संगत बोलो श्री, जां एक मन होके एकाग्र चित होके संगत ने अरदास कीती, वाहिगुरु ने आप कृपा करके उस दे नाल दी पुरानी खड़ाम जोड़ी जुड़ी खड़ाम पुरानी बार की तकिया जोड़ी खड़ावां दी पई है। राणी खुशी खुशी घर नूं आई। राजा इस गल दी उड़ीक विच सी, भई आवेगी तां पहला सवाल ए करांगा कि तेरी खड़ाम कित्थे है, उच्चारण करो श्री। पर जदों घर आई खड़ावां दोनों ही पैरियां हुईयां सन। राजा हैरान हो गया, भई कोई नवी भी नहीं है, पुरानी दे नाल पुरानी मिली है। अख्या ये खड़ाम, एक खड़ाम तो मैं तेरी चुप के ले आंदी है ते ये कित्थों आ गई है, उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। राणी दे नैन कटोरे भर आए। अख्या राजा मैं रोज सत संगत विच जांदी हां ते नित नेम करदी हां, तेरे लई भी परमेश्वर कोलों खुशियां मंगदी हां, अपने लई भी मंगदी हां, तेरे लई भी अरदास करदी हां कि वाहिगुरु तेरा भी लोक परलोक सुहारे ते मेरा भी सुहारे। राजे ने जदों ऐसे वचन सुने मन ऐसा प्रभावित होया कि फिर जितना समा संसार ते रहा धर्म दा राज कीता अते निता प्रति दोनों टाइम सत संगत च बह के मालक दे गुण गांदा रहे। इना पगतियां नू सिद्ध कर दिता के जो इच्छा सोई फल पावे। प्यारी सत संगत, जो भी कोई इच्छा करके सत संगत विच आउंदा है ना।

आओ भाई बंदी छोड़ नू अरदास की पिसीना। पातशाह सी कैद हो पे मेर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी करा अपना पल्ला पकड़ा। गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दें।

बिन सिमरन भय कुकर काम। सिमरन तो बिना इंसान नहीं काम ही कुत्ता है। आख्या कहने ने जून पोगरे बिन सिमरन भय कुकर काम। साकत बेसवा पूत नना बिन सिमरन गर्दब की न्याई। आप बिना सिमरन तो खोता बनिया खड़े।

नारायण नारायण करना, पुत्र नारायण, नारायण परमेश्वर का नाम भी। अंत वेले जमदूत आए, अजामल जेड़ा सी जमदूता नु देख के ते डर गए, पुत्र भुल गया ते कहन लगा नारायण बचा। नारायण के मनो जमदूत हट गए, देवते आए ता नामदेव जी कहंदे ने ओ अजामल पापी भी बैकुंठ नु चला गया, भावे सारी उम्र पाप कीते पर एक वारी ना

कमरे विच लै गई, सुके बस्तर दिती, सेवा कीती, बेनती कीती मां पुरशा नूं कि मैं बड़ी पापण, कृपा करो मेरा भी उधार होवे। तां मां पुरशा ने कहा, इह साडे कोल तो

अपने नेम अनुसार कहन लगी गंगा राम कहो राम राम। ओ सप जिहड़ा पिंजरे विच बैठा सी है सी जमदूत, उसने गनका नूं भी डंक मारे है, पर मूंह विच राम राम सी। ता नामदेव जी बयान करदे ने कि उस गनका दा

पर कृष्ण भगवान ने उस पूतना नू खत्म कर दिता। पर भगवान दे हथों मर के उदा भी उदार हो गया। भगत जी बयान करदे ने, बाल कातनी कपटे भरी, ओ पूतना कपट दी भरी होई, आई मारन वास्ते कृष्ण भगवान नू।

पृथ्वी दी परिक्रमा करन निकलन गे तू मेरी परिक्रमा कर ली पृथ्वी दी परिक्रमा हो जावेगी। समा आया सारे राजे महाराजे बहादुर अते इंद्र देवता सारे पृथ्वी दी परिक्रमा करन वास्ते अपने अपने रथां ते तैयार खलोते ने। गौतम ऋषि अपनी भगवान की परिक्रमा करन लग पे है ता इंद्र ने देखिया कि गौतम ऋषि नाल मेरे रथ ते सवार है ता इंद्र बड़ा हैरान होया पर उसनु मान सी।

अपना रथ भजाई जा रहे है। इंद्र बड़ी कोशिश करता है पर गौतम ऋखी तू अगे नहीं निकल सकता, निकले भी किवें क्योंकि गौतम ऋखी

कि अहल्या की शादी गौतम ऋषि नाल हो गई है। इंद्र जिहड़ा सी मन विच कुड़दा होया वापस इंद्रपुरी चला गया। गौतम ऋषि दा विआह अहल्या नाल होया, ए अपने टिकाने वापस आ गए। जीवन सुखां दा बतीत होण लग पिया, पर इंद्र मन विच कुड़दा रहा ते सोचदा रहा किसे ना किसे तरीके अहल्या नूं मैं प्राप्त करना है। इसे करके गुरु साहिबां ने कहा बाणी विच, है भाई एक अकाल पुरख नूं नमस्ते करो, ओनू मत्था टेको, क्योंकि ओदे विच कोई औगण नहीं, ओदे विच कोई विकार नहीं। ए इंसान औगणा दे भरे होए ने, ते जिहड़ा औगणा दा भरिया है ओदे आगे मत्था टेकण दा की फायदा। ए इंद्र भावें देवता खवांदा है पर सोचदा है पराई औरत अहल्या ओनू मैं प्राप्त करना है, ते जिहड़ा इंसान आप भुले है ओनू मत्था टेकण दा

इंद्र देवता अपनी सभा लाके बैठे, कुछ सोच रहे है। ता लिखिया है कि इंद्र नु चिंता विच पिया देख के चंद्रमा भी कोल बैठा सी। चंद्रमा कहन लगा, इंद्र

पाक हो गए। ए इंदर शर्मिंदा हो के ओथो निकल तो रहा। गौतम रिखी ने अहलिया नु सराफ दिता, तो सिल पत्थर दी बन जाएंगी। अहलिया हाथ जोड़ के कहन लगी, मेरा की कसूर है जो तुसी मैनू सराफ दे रहे हो। गौतम रिखी कहन लगे, सराफ दे चुका और पत्थर दी तू बन जाएंगी। अहलिया हाथ जोड़ के कहन लगी, फिर मेरा उदार किस तरह होवेगा। गौतम रिखी कहन लगे, त्रेते युग विच जदों श्री रामचंद्र बनवास नू जानगे ता उन्ना दे चरना दी शो दे नाल तेरा उदार होवेगा। फिर अपनी लड़की दे कोल आए, लड़की नू सराफ दिता के तेनु कुआरी नू गर्भ होएगा और कुकड़ बनेरे ते बैठा सी चंद्रमा, उसनु अपना गिल्ला परना मारिया ते नाले सराफ दिता के तेनु एक लंक हमेशा इसे तरह चिमड़िया रवेगा। ते सचमुच उसे तरह होया, अहलिया पत्थर दी बन गई, चंद्रमा नु कलंक लग गया। इंद्र देवते दे शरीर ते हजारां भाग हो गए। ओ इंद्रपुरी हुण वापस नहीं जांदा।

पर परमेश्वर ने इन्हां दा उद्धार कीता। जिन्ना जिन्ना भी पापियां नाम जपिया उन्हां दा उद्धार हो गया। तां ऐ भाई

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो ही एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ए प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवे निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इस दी जाति औड़ वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

ये बेनती कौन कर रहा है, ये अरदास कौन कर रहा है। गुरु नानक नूं जिस किसे ने भी जिथे किथे पुकारिया, गुरु नानक उस दे दुख कटन वास्ते पहुंच गया। अज संसार नूं तारदे होए धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दीपालपुर दी धरती ते जा पहुंचे। शामा दा समा है, ते साहब जी ने मर्दाने नूं आख्या वही जा मर्दानिया, ओ दुकानदार कोल पुछ वही कि असी मुसाफिर हां, प्रौहणे हां संसार ते आए, और इत्थे मुसाफिर बन के दीपालपुर आए हैं भाई, एक रात बितानी है। जे रात तू दुकान बंद करके घर जावे तो असी तेरी दुकान दे बाहर आराम कर लवांगे। दीन दुनिया दा मालक सर्वशक्तिमान आप नारायण कलातार धन गुरु नानक सच्चा पातशाह रात ठहरन वास्ते थां मांग रहे। सात सगत बोलो श्री, ते जदों मर्दाना दुकानदार को लगया भाई आ तू हट्टी बंद कर लो तां सी रात इत्थे ठहर जाई। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਠਹਿਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਭਾਗ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਢੂੰਡ ਲਓ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਉਹ ਦੂਰ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਈਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਫਲੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੋਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਬਈ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਬਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾ ਲਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਝੱਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਲਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰਦਾਨਿਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਬੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ।
गरीब नवाज ओह तां तुर भी नहीं सकदा, ओहदे तां पैर ही गल चुके हन घोड़ दे नाल। अच्छा मर्दानिया, जे ओ आप नहीं आ सकदा तां तू उसनू खिच के बाहर ले आ। मर्दाना, उस कोड़ी नू त्रू के खिच के बाहर लियाया ते लिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह दे सन्मुख कीता। लो गरीब निवाज साहब जी ने तकिया, कोड़ी वाल मेर दी नजर कीती, कोड़ी ने जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते, ऐसे रूहानियत दे दर्शन कीते, अकाल पुरख वाहेगुरु दे रूप दे जदो दर्शन कीते, तां कोड़ी दा तन मन ठर गया। आ जिस कोड़ दे विच हाय हाय बिलख रहा सी, कुरला रहा सी, ओ दुख भुल के गुरु नानक वाले अखां ला के तक रहा है। आख्या, महापुरखो, हे रब दे प्यारे हो, रब दे रूप कितों आए हो, ते मेरे जैसे कोड़ी दे कोल रात ठहरन वास्ते जिसनू घर वालिया ने भी कढ छड़िया, दुरकार के कढ छड़िया, क्योंकि किस वेले मैं भी बहुत धनी सा, मेरे पास बहुत पैसा सी, मां प्यां दा साया सिर तों उठ गया, ते जितने मित्र दोस्त सन सारे धन नू ही चाहन वाले सन, ऐसी कुसंगत मिल गई मित्रां दी दोस्तां दी कि मैं गलत रस्ते तुर पिया। ते ओ जेड़ा धन सी उदे नाल मैं पाप कीते, ते जदों धन खत्म हो गया ते मित्र दोस्त भी साथ छोड़ के चले गए, ते उस धन दे नाल जदों मैं पाप कीते सन, ओ पाप हुण मेरे तन ते कोड़ बन के फुट पए हन। सात सगत बोलो श्री, हुण जदों मैं कोड़ी हो गया तां मेरे घर वालियां ने भी आख्या, हुण तू घर दे विच रहण दे लायक नहीं, क्योंकि तू छूत दी बीमारी है, जे तेरे नाल कोई होर लगेगा ओ भी कोड़ी हो जाएगा। इस वास्ते मैनू आ घरों पिंड विचों कढ के इत्थे चुगी पा के बिठा गए। कितने कितने दिन बीत जांदे हन, मैनू मनुख दी शकल नहीं दिसदी, कोई तरस करके रोटी रख जावे तां मैं खा लैंदा, नहीं तां भुखे ही समा बीत जांदा। लेकिन हे रब दे प्यारियो, तुसी आज इस स्थान पे जिसनू संसार विच सारिया ने दुरकार दिता, सारिया ने निकाल दिता, तुसी मेरे कोल रात ठहरन वास्ते आए हो, मैं आप दी किवें सेवा करां, मेरे हाथ नहीं, मेरे पैर कोई नहीं, आ वेखो कोड़ लग्या होया हथां पैरां नू, जे इन्हां हथां दे नाल मैं साध संगत दी सेवा कर लैंदा तां खबरे आ दुख मैनू ना लगदा, जे इन्हां पैरां दे नाल मैं माड़े पासे तुर के ना जांदा, सत्संग वल जांदा, तां अज मैं कोड़ी ना होंदा। लेकिन आए हो तां हुण मेरे ते कृपा करो। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जदों उस दा कोड़ी दा आ विरलाप सुनिया, दुख सुनिया, कोड़ दे विचकार बिलख रहा है, तां धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उत्थे तनाश्री राग दे विच शब्द उचारिया, ये साहब जी ने की आख्या,